0: पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं।
1: सामने पर निश्चात को शॉर्टवेव सोलम टिप बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज के अलावा 3 और 4 वेस्ट में तुम्हारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं।
0: आज हमारे प्रोग्राम में अलग तरतीब खबरें होंगी, उसके बाद सिलसिलेवार प्रोग्राम तज्जिया और क्यों के पेश किए जाएंगे।
1: हमारा ये प्रोग्राम हसबे मामूल 1 घंटे तक जारी रहेगा। आज आपके मेजबान हैं इमरान ओपल
0: और सगीर अहमद।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: फिलिस्तीनी कैदियों के हकूक के मरकज की जानब से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 370 फिलिस्तीनी बच्चे इसराइली जेलों में कैद हैं। इन बच्चों की अक्सरियत मेगेदू और ओफर जेलों में बंद है। हकूक इंसानी के लिए काम करने वाले इस ग्रुप ने बताया कि अगस्त के आगाज तक इसराइल की जानब से कैद किए गए 9,400 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों और हिरासती मुतबादलों में ये बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली अफवाह ने साल 2026 के पहले 6 महीनों में 276 फिलिस्तीनी बच्चों को हिरासत में लिया। ग्रुप का कहना है कि इसराइल की जानब से फिलिस्तीनी बच्चों को हिरासत में लेना अब महज इनफरादी वाकया तक महदूद नहीं रहा बल्कि यह मकबूजा मगरबी किनारे और मशरकी अलकुद्स में गिरफ्तारियों की मुहिम का एक मुस्तकिल हिस्सा बन चुका है। रिपोर्ट में इसराइल की जानब से इंतजामी हिरासत के अमल को जारी रखने पर भी तवज्जो दिलाई गई है जो फिलिस्तीनियों को बगैर किसी जुर्म के या बगैर किसी अदालती कार्रवाई के और गैर ऐलानिया शवाहिद की बुनियाद पर ऐसी मुद्दत के लिए हिरासत में रखने की इजाज़त देता है जिसमें बार बार तौसी की जा सकती है। फिलिस्तीनी और बैन अवी इंसानी हकूक की तंजीमों ने कई बार इसराइली हुकाम पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि वो कम उम्र बच्चों समेत दीगर कैदियों को इंतहाई सख्त हालात में रखते हैं और उन्हें मुनासिब खुराक और तबी देखभाल फराहम नहीं करते।
0: इसराइल शाम खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी रखे हुए इसराइल फौजी शाम के जनूबी सूबे कलतीरा के बास देहातों में फौजी गाड़ियों के साथ दाखिल होकर घरों की तलाशी ली जबकि दमिश्क के दही इलाके को तोपखाने के हमले से निशाना बनाया। शामी सरकारी टेलीविजन की खबर के मुताबिक इसराइल फौज ने कंतीरा के गाँव ब्रेका और रस्मला जरफ में तलाशी की कार्रवाइयां सर अंजाम दी। हमले के बाद जानी मान नुकसान से मुतलक फिलहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया। गुलान के पहाड़े पर दाएं से कब्जा रखने वाले इसराइल हाल में शाम के जनूबी इलाकों कंतीरा और दरान में छापों तलाशी कार्रवाइयों चेक पोस्ट कायम करने जैसी सरगर्मी में इजाफा कर दिया है।
1: नेपाली हुकूमत ने बताया है कि उन्हें चीन की तरफ से इंतबाह मौसूल हुआ है कि कल रूनुमा होने वाले सैलाब के बाद अमल में आने वाली झील टूट सकती है। पुलिस ने कहा कि तलाश रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों पर मामूर तमाम सिक्योरिटी अहलकारों निजात कारकुनों और मकामी लोगों को चौकस रहने और फौरी तौर पर महफूज इलाकों की तरफ मुंतकिल होने की हिदायत दी गई है। मज़कूरा दावे की ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी है लिहाजा हुकाम ने शहरियों से चौकस रहने की अपील की है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब में हलाक शुदगान की तादाद 469 हो गई है। नेपाली हुकाम ने कहा कि सैलाबी पानियों की वजह से दर्जनों पुल मुनहदम हो गए सड़कें मुतासर हुई और तलाश और रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर रवाना किए गए हैं। हुकाम ने ऐलान किया कि 1300 से ज्यादा अफराद लापता हैं जिनमें गैर मुल्की भी शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक नेपाल के सैलाब के बायस चीन के तिब्बत खुद मुख्तार खत्ते में 3 अफराद हलाक और 558 अफराद के बारे में कोई इत्तला नहीं मिली। सैलाब से कबल इलाके में पहले एक जल्जला आया था। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने अपने डेटा को अपडेट करते हुए कहा है कि 5.2 शिद्दत के इस जल्जले का सबब ग्लेशियर का गिरना था।
0: रूस ने एक बयान में इंतबाह जारी किया कि कीव की जान से बरतानवी इसराइल के जरिए रूस पर हमलों के जवाब में यूक्रेन से बाहर वाकया बरतानवी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। रूसी वजारत खारजा की तर्जमा मारिया जखारोवा ने मास्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया बारह ये इंतबाह दे चुके हैं कि रूसी सरजमीन पर हमलों के लिए बरतानवी हथियारों के इस्तेमाल के जवाब में यूक्रेन और यूक्रेन से बाहर मौजूद तमाम बरतानवी फौजी तनसीबात और आलात को निशाना बनाया जा सकता है। ज़ख़ारों ने तबील फासले तक मार करने वाले स्टॉर्म शेडो क्रूज मिसाइल कीव के हवाले को जारी करने को जारी यूक्रेन जंग में बताने की बराह रास्त शमूलियत का सबसे वाजिया सबूत करार दिया। उन्होंने कहा 2023 में यूक्रेन को पहली बार स्टॉर्म शेडो मिसाइल दिए जाने के बाद से बरतानिया के इस्तेमाल से मुतल सवाल के जवाब देने से गुरेज करता रहा। उन्हें याद दिलाया कि मई 2024 में बरतानी के उस वक्त वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून ने कहा था यूक्रेन खुद फैसला करेगा बरतानवी हथियार कैसे और कहां इस्तेमाल करने हैं। ज़ाहिर है बरतानवी हुकूमत पर रूस को स्ट्रेटेजिक शिकस्त देने की कोशिश जारी रखने का इल्ज़ाम भी आयद किया और दावा किया कि कोशिश नाकाम होने के लिए बनी है। ज़ाहिर है बरतानवी रहने वाले शहरों से अपील की वह अपने निज़ाम के मुआंदाना इकदाम के नाकजी तबाहकुन नतज पर गौर करें।
1: कोलंबिया के मगरबी और वस्ती हिस्से में वाक़ तोलीमा में कई दिनों से जारी जंगलाती आग के बायस एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सदर अबेलार्डो डी ला एस्पेरेला ने अपने एक बयान में कहा है कि इस आग से कम अज़ कम 50,000 हेक्टर का रकबा मुतासर हुआ है, 2,600 से ज़ायद काश्तकारों और पैदा कुनंदगान का नुकसान हुआ है और माली नुकसान 134 अरब पैसों तक पहुँच गया है। डेला एस्पेरेला ने हवा और ज़मीन से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी होने की तौज़ीह करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इलाके को दोबारा बहाल करने

0: के लिए एक जामे बहाली प्लान नाफिज किया जाएगा। दानिस्ता तौर पर आतिशजनी की तरफ इशारा करते हुए सदर ने ऐलान किया कि तखरीबकारों को पकड़ने के लिए एक खसूसी टीम तश्कील दे दी गई है और जिम्मेदारों की गिरफ्तारी में मुआवनत करने पर 50 मिलियन पैसों तक के इनाम का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें खत्म हुई।
1: तो आइए सामिन बेंगू और सरदार और ताज की आवाज में एक तुर्की नगमा समाप्त फरमाइए।